0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पैनियान विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीते रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे।

नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम जल और जलवायु। आज के कार्यक्रम में हम दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहें।

0: जलवायु और जल से संबंधित समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में आयोजित चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक माना जाता है। ये सम्मेलन तजकिस्तान गणराज्य के पहल और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों की सुरक्षा तथा सतत विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करना है। आज के आधुनिक युग में जल का प्राशन मानवता की सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं में से एक बन चुका है, क्योंकि मानव जीवन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सीधे जल संसाधनों पर निर्भर है। इसी कारण इसे सम्मेलनों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018 से आज तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से दुशांबे शहर में 3 उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जो सन 2018, 2022, 2024 में। इन सम्मेलनों की श्रृंखला, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जल संसाधनों, स्वच्छता तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक स्थायी मंच बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि 25 से 28 मई सन 2026 तक दुशांबे शहर में सतत विकास के लिए जल 2018-2028 अंतर्राष्ट्रीय कार्य दशक पर चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जल और जलवायु के क्षेत्र में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय नेता मामहिम इमोमाली रहमान के अंतर्राष्ट्रीय पहलों के संबंध में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन रणनीतिक अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था विश्लेषण एवं पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख जुराखोम बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: امروز جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
0: آج تاجکستان کو انتراشی ستار پر آج کے مہان نیتا مامہیم امالی رامون کے 16 ویشویک سپاہلوں کے مادیم سے پہچانا اور سے رہا جاتا ہے۔ آج مانوتا کے سامنے سب سے گمبھیر سمسیاؤں میں سے ایک جلوایو پریورتن کی تیور گتی ہے۔ دور بھاگیواش ہمارا گراہ ورتمان سمے میں گمبھیر پریاورنی سانکٹ کا سامنا کر رہا ہے، اس لیے ستت آرتھک وکاس سنشچت کرنا تتھا پریاورن سنرکشن کرنا پورے وشو کے لیے 21ویں صدی کے سب سے مہتوپورن دائتووں میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ کہنا آوشیک ہے کہ جل اور جلوایو کے کھیتر میں راشٹر نایک پہلوں کا مکھیہ ادیشیا یہ ہے کہ آج وشو سمودائے ان لابھکاری اپیوگوں کو اپنی رنانیتیوں، سرکاری کاریکرموں، وکاس آدھار ناہوں تتھا آنیا قانونی دستاویزوں میں لاگو کرے، کیونکہ آج ہم جلوایو پریورتن میں بہیاوا پریناموں को देख रहे हैं, जिन्होंने विश्व के अनेक देशों के अर्थव्यवस्थाओं को भारी आर्थिक और वित्तीय क्षति पहुंचाई है। ये क्षति अपने साथ व्यापक मानवीय नुकसान भी लेकर आती है। तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं और उनके विनाशकारी परिणामों का समाधान विश्व देशों की एकता, प्रभावी सहयोग के विस्तार तथा मानवतावादी पहलों के माध्यम से संभव है, जो पृथ्वी के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करती है। विशेषज्ञों के अनुसार आज विश्व के 80 से अधिक देश जल संसाधनों की कमी का अनुभव कर रहे हैं, जबकि सूखा और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पृथ्वी पर 2 अरब 10 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है।

0: आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। विश्व के लाखों लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित है और अनेक देश जल संकट से पीड़ित है। कुछ क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं अधिक देखने को मिल रही है। ये सभी समस्याएं विश्व समुदाय को जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन इसे वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेते हैं तथा जल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सम्मेलन देशों को अपने अनुभव साझा करने और जल के प्रभावी उपयोग के नए तरीकों को खोजने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों के पास जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों का अच्छा अनुभव है जबकि अन्य देश उन अनुभवों से लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के माध्यम से नए संयुक्त परियोजनाएं तैयार की जाती है और उनके कार्यान्वयन के लिए निवेश आकर्षित किया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे देश में आने वाले दिनों में दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन आयोजित होना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के पिघलने की वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्मेलन के महत्व के बारे में जुरा खान बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: باید گفت که دیپلماتی آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین
0: رشک مهمهیم نیتا دوارا جال کوتنیتی کو آگه برهانی سے پربھاوی انتراشری سمبندھوں میں ایک نئی پہل کا ادائی ہوا ہے۔ اس لیے جل سنسادنوں کا ویویکا پورن اپیوگ اور گلیشیاروں کے پگھلنے کا مدعا آج کی تاجکستان سرکار کی نیتی کے سب سے مہتوپورن دشاؤں میں سے एक माना गया है। 25-28 मई को दुशांबे में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सम्मेलन इससे पहले आयोजित सम्मेलनों की तरकीब निरंतरता है। पहला सम्मेलन 25-28 मई 2019, दूसरा 6-9 जून 2022 और तीसरा 10-13 जून 2024 को दुशांबे में आयोजित किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तजिकिस्तान विशाल जल विद्युत संसाधनों से समृद्ध देश है। इसलिए देश का भविष्य हर दृष्टि से इस ऊर्जा स्रोत के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। रश के महामहिम नेता का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तेजी से बढ़ते खतरों को मानवता के हित में कम करना है। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य एशिया के लगभग 60% जल संसाधन तजिकिस्तान के क्षेत्र में बनते हैं और देश के अर्थव्यवस्था के आगे के विकास के लिए जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण आज तजिकिस्तान सरकार का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, देश का तीव्र औद्योगिकरण करना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना और साथ ही लोगों के जीवन स्तर तथा जीवन गुणवत्ता को अन्य देशों की तुलना में बेहतर बनाना है।

अंत में कहा जा सकता है कि दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन जल और जलवायु से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, हिमनदों की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने, सतत विकास सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज जब दुनिया जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे सम्मेलन मानवता का बेहतर भविष्य के लिए नए समाधान खोजने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दुशांबे जल प्रक्रिया आज विश्व स्तर पर जल और जलवायु से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मंचों में से एक बन चुकी है और वैश्विक समस्याओं के समाधान में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसके भविष्य के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है हमारे अरेजो के साथ रहे।

0: دید دور اور وشیشگیوں کے ساتھ سانوا جیسی گتویدیان آیوجیت کرتا ہے شب درو سرخونہ کا موکی ادیشہ سنگرالیوں کو ایک جیوانت اور اکرشک ستھان بنانا ہے نہ کہ کیول پرانی وستووں کا شانت باندھا یہ کاریکرم لوگوں کو اتہاس کو ادھیک روچک طریقے سے سیکھنے کا اوسر دیتا ہے اور انہیں اپنی راشٹری سانسکرتی کے قریب لاتا ہے وشیش روپ سے یواؤں میں یہ کاریکرم اتہاس اور سانسکرتی کے ادھیایاں کے پرتی روچی بڑھاتا ہے شہیدہ شراف تشکیسان کے راشٹری سنگرہالے کے کرمچاری شب در اوسور خونہ کاریکرم کے آیوجن کے بارے میں اور اس کی تیاری کے بارے میں اس پرکار کہتی ہے
1: नमस्कार ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय प्राचीन ताजिक राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति का प्रदर्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय में 3 मंजिले और 1 ताखाना है राष्ट्रीय संग्रहालय के ताखाने में प्राकृतिक विभाग स्थित है पहले मंजिल में प्राचीन ईवान मध्यकालीन इतिहास विभाग है दूसरी मंजिल में आधुनिक ईवान समकालीन इतिहास विभाग और तीसरी मंजिल में ललित ईवान अनुप्रयुक्त कला विभाग यानी चित्रकला विभाग स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रतिदिन घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटक आते रहते हैं याद दिलाना चाहिए कि घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के कर्मचारियों की तरफ से 8 भाषाओं में भ्रमण का आयोजन करता जाता है राष्ट्रीय संग्रहालय में विदेशी मेहमानों के लिए रूसी अंग्रेजी हिंदी उर्दू अरबी चीनी फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में भ्रमण का आयोजन करता जाता है और मैं राष्ट्रीय संग्रहालय में हिंदी और उर्दू भाषाओं की गाइड हूँ और मुझे विदेशियों के सामने ताजिक राष्ट्र के सांस्कृतिक और इतिहास को हिंदी में प्रस्तुत करने पर बहुत गर्व है और खुश भी हूँ राष्ट्रीय संग्रहालय में नियमित रूप से सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हो जाता है और विशेष रूप से वार्षिक नाइट एट द म्यूजियम का कार्यक्रम राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित किया जाता है इस कार्यक्रम में 30 प्रोग्राम है उस रात जो ये सब प्रोग्राम राष्ट्रीय संग्रहालय के कर्मचारियों की तरफ से बना हुआ है ये कार्यक्रम 18 मई 6 बजे से शुरू होगा रात के 12 बजे तक काम करेगा प्रिया श्रोताओं मैं आप सभी लोगों को नाइट एट द म्यूजियम के कार्यक्रम में राष्ट्रीय संग्रहालय में स्वागत करती हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने से हम बहुत खुश होंगे राष्ट्रीय संग्रहालय में तशरीफ लाइए
0: تشکستان کی سوتنترتا کے بعد سنگرالیوں کے وکاس میں ایک نیا چران شروع ہوا اس اودھی میں دیش کے سانسکرتک اور اتہاسک وراثت کے سنرکشن پر وشیش دھیان دیا گیا ہے تشکستان گنرجا کے راشٹرپتی ممہیم ای مومالی رحموں کی پہل پر سنگرالیوں کو پر جیوت اور آدھونک روپ دیا گیا اس پرکریا کے پرینام سوروپ نئے سنگرہالے استھاپت کیے گئے اور پرانے سنگرالیوں کا پر نرمان کیا گیا ہے دیش کے سب سے महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थानों में तजकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रमुख है जो राजधानी दुशांबे में स्थित है ये संग्रहालय तजकिस्तान का सबसे बड़ा और आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है इसे सन 2013 में खोला गया और इसमें हजारों ऐतिहासिक वस्तुएं संरक्षित है जो ताजिक लोगों के हजारों वर्षो के इतिहास को दर्शाती है यहाँ पुरातात्विक खोजें कलाकृतियां प्राकृतिक नमूने और संस्कृति धरोहरें सुरक्षित रखी गई है तजकिस्तान के संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं के संरक्षण स्थल नहीं है बल्कि वे वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है वे युवाओं में देश भक्ति आत्म जागरूकता और इतिहास के प्रति सम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है संग्रहालयों में प्रदर्शनियां सम्मेलन बैठकें और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है जो समाज में ज्ञान और जागरूक बढ़ाने में सहायक होते हैं تجکستان گدرنجا میں بھی سنگرالیوں کا وشیش مہتو ہے تجکستان ایک سمرد اتہاس اور سنسکرتی دھروہر والا دیش ہے راشٹریہ سنگرہالے کئی منزلوں اور بڑے پردرشانی حالے سے بنا ہے اس میں ہزاروں اتہاسک اور سنسکرتی وستوئیں سنرکشت ہے جو تاجک لوگوں کے ہزاروں ورشوں کے اتہاس کو درشتی ہے سنگرہالے ایک متوپورن بھاگ پراچین اتہاس وبھاگ ہے یہاں سرازن پنجکین ہلبوک اور آنیا اتہاسک حلوں سے پرا پرا विविध वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। ये वस्तुएं प्राचीन

सभ्यता और ताजिक लोगों की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन, प्राचीन सिक्के, हथियार और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं ये दर्शाती है कि ताजिक लोग प्राचीन काल से ही एक उन्नत सभ्यता के वाहक रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में राष्ट्रीय कला और संस्कृति के उत्कृष्ट नमूने भी संरक्षित है। राष्ट्रीय पोशाकें, संगीत वाद्य यंत्र, लोक कला और चित्रकला ताजिक संस्कृति के पहचान को दर्शाते है। आगंतुक यहाँ आकर परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली से परिचित हो सकते हैं। संग्रहालय का एक सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन अजिनतेपा मठ से प्राप्त विशाल बुद्ध प्रतिमा है, जो निर्वाण मुद्रा में है। ये मध्य एशिया में बौद्ध कला के सबसे बड़े अवशेषों में से एक माना जाता है और इसका अध्ययन ऐतिहासिक महत्व यह दर्शाता है कि तजिकिस्तान प्राचीन समय में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र रहा है। आज राष्ट्रीय संग्रहालय केवल ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण का स्थान नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कार्यक्रमों का केंद्र भी है। यहाँ प्रदर्शनियां, सम्मेलन, वैज्ञानिक बैठकें और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये गतिविधियां लोगों की सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इतिहास के अध्ययन के लिए प्रेरित करने में मदद करती है। राष्ट्रीय संग्रहालय पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक यहाँ आकर तजिकिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक से परिचित होती है। ये संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और तजिकिस्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में योगदान देता है। आज के वैश्वीकरण के युग में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। संग्रहालय राष्ट्रीय और ऐतिहासिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा नहीं की गई तो एक राष्ट्र अपने इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकता है। इसलिए संग्रहालयों का विकास और संरक्षण सरकार और समाज दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अंत में कहा जा सकता है कि विश्व संग्रहालय दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो संग्रहालयों की भूमिका को इतिहास और संस्कृति के संरक्षण उजागर करता है। तजिकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय देश के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संग्रहालय अतीत और वर्तमान को जोड़ने का कार्य करते हैं और समाज में शिक्षा, देशभक्ति और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए संग्रहालयों का संरक्षण और विकास किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी तजिकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय और शब्बेदार ओसोरखोना के कार्यक्रम के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें। रेडियो आवाज ताजिक, दिलों की आवाज़।

नमस्ते प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम जल और जलवायु। आज के कार्यक्रम में हम दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन के महत्व तथा जल और जलवायु संबंधी समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहें।

0: जलवायु और जल से संबंधित समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में आयोजित चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से एक माना जाता है। ये सम्मेलन तजकिस्तान गणराज्य के पहाड़ और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों, जलवायु परिवर्तन, हिमनदों की सुरक्षा तथा सतत विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विश्व समुदाय को एकजुट करना है। आज के आधुनिक युग में जल का प्राशन मानवता की सबसे बड़ी वैश्विक समस्याओं में से एक बन चुका है, क्योंकि मानव जीवन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सीधे जल संसाधनों पर निर्भर है। इसी कारण इसे सम्मेलनों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2018 से आज तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के सहयोग से दुशांबे शहर में 3 उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जो सन 2018, 2022, 2024 में। इन सम्मेलनों की श्रृंखला, जिसे दुशांबे जल प्रक्रिया का नाम दिया गया है, जल संसाधनों, स्वच्छता तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक स्थायी मंच बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि 25 से 28 मई सन 2026 तक दुशांबे शहर में सतत विकास के लिए जल 2018-2028 अंतर्राष्ट्रीय कार्य दशक पर चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जल और जलवायु के क्षेत्र में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय नेता मामहिम इमोमाली रहमान के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के संबंध में तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन रणनीतिक अनुसंधान केंद्र के क्षेत्रीय आर्थिक अवस्था विश्लेषण एवं पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख जुराखोम बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: امروز جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
0: آج تاجکستان کو انتراشتی ستر پر آج کے مہان نیتا مامہیم امامعلی رحمان کے 16 ویشویک سپاہلوں کے مادیم سے پہچانا اور سے رہا جاتا ہے۔ آج مانوتا کے سامنے سب سے گمبھیر سمسیاؤں میں سے ایک جلوایو پریورتن کی تیور گتی ہے۔ دور भाग्यवश हमारा ग्रह वर्तमान समय में गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है, इसलिए सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण संरक्षण करना पूरे विश्व के लिए 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक बन गया है। ये कहना आवश्यक है कि जल और जलवायु के क्षेत्र में राष्ट्र नायक की पहलों का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज विश्व समुदाय इन लाभकारी उपयोगों को अपनी रणनीतियों, सरकारी कार्यक्रमों, विकास आधारनाओं तथा अन्य कानूनी दस्तावेजों में लागू करे, क्योंकि आज हम जलवायु परिवर्तन में बाह्यवा परिणामों को देख रहे हैं, जिन्होंने विश्व के अनेक देशों के अर्थव्यवस्थाओं को भारी आर्थिक और वित्तीय क्षति पहुंचाई है। ये क्षति अपने साथ व्यापक मानवीय नुकसान भी लेकर आती है। तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमान का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं और उनके विनाशकारी परिणामों का समाधान विश्व देशों की एकता, प्रभावी सहयोग के विस्तार तथा मानवतावादी पहलों के माध्यम से संभव है, जो पृथ्वी के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता करती है। विशेषज्ञों के अनुसार आज विश्व के 80 से अधिक देश जल संसाधनों की कमी का अनुभव कर रहे हैं, जबकि सूखा और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पृथ्वी पर 2 अरब 10 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है।

0: आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। विश्व के लाखों लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित है और अनेक देश जल संकट से पीड़ित है। कुछ क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं अधिक देखने को मिल रही है। ये सभी समस्याएं विश्व समुदाय को जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन इसी वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भाग लेते हैं तथा जल से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सम्मेलन देशों को अपने अनुभव साझा करने और जल के प्रभावी उपयोग के नए तरीकों को खोजने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों के पास जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों का अच्छा अनुभव है, जबकि अन्य देश उन अनुभवों से लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के माध्यम से नए संयुक्त परियोजनाएं तैयार की जाती है और उनके कार्यान्वयन के लिए निवेश आकर्षित किया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे देश में आने वाले दिनों में दुशांबे जल प्रक्रिया का चौथा सम्मेलन आयोजित होना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों के पिघलने की वर्तमान परिस्थितियों में इस सम्मेलन के महत्व के बारे में जुरा खान बोबोजोदा ने इस प्रकार कहा है।
1: باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین
0: رشک مهمهیم نیتا دوارا جال کوتنیتی کو آگه برهانی سے پرباوی انتراشری سامبندون میں ایک نئی پہل کا ادائی ہوا ہے۔ اس لیے جال سانسدانوں کا ویویکا پورن اپیوگ اور گلیشیاروں کے پگھلنے کا مدعا آج کی تاجکستان سرکار کی نیتی کے سب سے مہتوپورن دشاؤں میں سے एक माना गया है। 25-28 मई को दुशांबे में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सम्मेलन इससे पहले आयोजित सम्मेलनों की तरकीब निरंतरता है। पहला सम्मेलन 25-28 मई 2019, दूसरा 6-9 जून 2022 और तीसरा 10-13 जून 2024 को दुशांबे में आयोजित किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तजिकिस्तान विशाल जल विद्युत संसाधनों से समृद्ध देश है। इसलिए देश का भविष्य हर तश्ती से इस ऊर्जा स्रोत के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। रश के महामहिम नेता का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तेजी से बढ़ते खतरों को मानवता के हित में कम करना है। साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्य एशिया के लगभग 60% जल संसाधन तजिकिस्तान के क्षेत्र में बनते हैं और देश के अर्थव्यवस्था के आगे के विकास के लिए जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण आज तजिकिस्तान सरकार का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, देश का तीव्र औद्योगिकरण करना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना और साथ ही लोगों के जीवन स्तर तथा जीवन गुणवत्ता को अन्य देशों की तुलना में बेहतर बनाना है।

0: ईसा मेला का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। आज जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन चुका है। तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि तथा मौसम में परिवर्तन जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तजिकिस्तान जो विशाल हिमनदों वाला देश है, इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देता है। तजिकिस्तान के हिमनद मध्य एशिया के कई देशों के लिए जल का मुख्य स्रोत है, लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ये हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। यदि ये प्रक्रिया जारी रही तो भविष्य में पूरा क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है। इसी कारण सम्मेलन में हिमनदों की सुरक्षा, उनका अध्ययन तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उनकी निगरानी जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की जाती है। दुशांबे जल प्रक्रिया सम्मेलन सतत विकास को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों भी उनके लाभ उठा सके। जल प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक है और इसका सही उपयोग देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृषि, उद्योग, ऊर्जा और अन्य अनेक क्षेत्र जल पर निर्भर है। यदि जल की कमी हो जाए या वो प्रदूषित हो जाए तो आर्थिक विकास धीमा पर जाता है और लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सम्मेलन में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। दुशांबे जल प्रक्रिया के चौथे सम्मेलन से तजिकिस्तान और विश्व को क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय पर जोराखोम बोबजोदा ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किया।
1: تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبوس های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت
0: میگیرد. انترشیز تر که سمیلان کا آیوجان اور سنچالان وستاو می رشک سامانی نیتا که انترشی پرلون که آدھار پر کیا جا راہی. یکی ناوشی که آج انترشی منچ پر تشکیستان گنجا کو کیوال جلوائیو پریورتان سے سامانید انترشی پرلون کو پرستود کرنے والے اگرانی دیش کے روپ میں ہی نہیں بلکہ اسے دیش के रूप में भी जाना, पहचाना और स्वीकार किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्याओं को समय रहते उठाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से विश्व समुदाय को जलवायु परिवर्तन की तीव्रता को कम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, आज तजिकिस्तान गणराज्य वास्तव में राष्ट्र के सम्मानित नेता के 16 अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के कारण विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से इन सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को स्वीकार और समर्थन दिया है। राष्ट्र के सम्मानित नेता की प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय पहल सतत विकास सुनिश्चित करने, जनता के जीवन स्तर और गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा गरीबी के स्तर को कम करने के उद्देश्य से स्वीकार की गई है। इसी संदर्भ में हमें विश्वास है कि 25-26 मई 2026 को आयोजित होने वाले चौथा उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उन लक्ष्यों और योजनाओं की प्राप्ति में सफल होगा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम एमोमाली रहमान ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया है।

सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा भी विशेष रूप से उठाया जाता है। आज दुनिया के कई देशों में जल की कमी कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। जल की कमी के कारण उत्पादन घटता है और आर्थिक समस्याएं बढ़ती है। चूंकि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए खाद्य सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। कृषि के विकास के लिए जल का सही और प्रभावी उपयोग आवश्यक है। सम्मेलन में आधुनिक सिंचाई तकनीकों, जल संरक्षण और कृषि उत्पादों की दक्षता बढ़ाने के उपायों पर विचार किया जाता है। दुशांबे जल प्रक्रिया सम्मेलन पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज भी बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि जल संसाधन सीमित है और उनकी रक्षा करना आवश्यक है। सम्मेलन और उससे संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जल के महा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। इससे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने में सहायता मिलती है।

0: نمسی پیاری سونی والو یا دلانای کی ابسوری ریدیو آواز تاجی ویش سانگرا هالای دیواز یه هماری ای سامای کی ویشه ویش سانگرا هالای دیواز دنیا بهار می منای جانی والی مهتوا پوران سانسکریتیک دینون می سی ایکی یہ ہر ورس 18 مئی کو منایا جاتا ہے اور اس کا مکھیہ ادیشیا سنگرہالیوں کی سنسکرتی شکشا اتہاس کے سنرکشن تتھا وبھن دیشوں اور لوگوں کے بیچ آپسی سماج کو بڑھاوا دینے میں ان کی بھومکا کو اجاگر کرنا ہے۔ سنگرہال ایسے متوپورا ویگیانک اور سنسکرتی کیندر ہوتے ہیں جو کسی راشٹر کی اتہاسک وراثت راشی مولیوں اور سنسکرتک دھروہر کو سنرکشت رکھتے ہیں۔ سنگرہالیوں کے مادھیم سے مانوتا اپنے آتیت کو سمجھ سکتی ہے اور اس اتہاسک انوبھاو کا اپیوگ بہتر بھوشیہ کے نرمان میں کر سکتی ہے۔ وش سنگرہالیہ دیواس کا اتہاس ورش 1977 سے جڑا ہے۔ اسی ورش انتراشٹری سنگرہالیہ پریشد یعنی انٹرنیشنل کونسل آف میوزیمس نے نرنائے لیا اسی ورش انتراشٹری سنگرہالیہ پریشد نے نرنائے لیا کہ ہر ورش 18 مئی کو وشو سنگرہالیہ دیواس کے روپ میں منایا جائے گا۔ تب سے لے کر آج تک دنیا کے انیک دیشوں میں ان دن وبھن سنسکرتی کاریہکرم پردرشنیاں بیٹھکیں اور شیشانک گتیویدھیاں آیوجت کی جاتی ہے۔ ان دن کا مکھیہ ادیشیا سماج کا دھیان سنگرہالیوں کی گتیویدھیوں اور سنسکرتک وراثت کے سنرکشن میں ان کی بھومکا کی اور آکرشت کرنا ہے۔ سنگرہالیہ سماج کے آدھیاتمک اور سنسکرتک وکاس میں متوپورم بھومکا نبھاتے ہیں۔ وہ کیول پرانی وستوؤں کے بہندر نہیں ہوتے بلکہ ویگیانک اور شیکشک کیندر بھی ہوتی ہے۔ سنگرہالیوں میں پراتاتوک کھوجوں ہست لکھت گران اتہاسک وستوئیں راشٹری پوشاکیں کلا کرتیاں اور انیا سنسکرتی دھروہریں سنرکشت رکھی جاتی ہے۔ پرتیک وستو کا اپنا اتہاس ہوتا ہے اور وہ ہمیں آتیت کے جیون کے بارے میں متوپورم جانکاری پردان کرتی ہے۔ اس لیے سنگرہالیہ یوا پیڑھی کو اتہاس کے پرتی سمان اور دیش بھکتی کی بھاونا وکاسیت کرنے میں متوپورم بھومکا نبھاتی ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں سنگرہالیہ کاریارت ہے۔ وش کے پرسی سنگرہالیوں میں لوورے میوزیم، برٹش میوزیم اور ہرمیٹیج میوزیم شامل ہے جہاں ہر ورش لاکھوں پریاتک آتی ہے۔ یہ سنگرہالیہ مانو سبھیتا کی سنسکرتک اور اتہاسک وراثت کے سنرکشن کا اتکرش ادھارن ہے۔ تاجکستان کے سنگرہالیوں کا اتہاس لمبا اور روچک ہے تتھا یہ دیش کے اتہاسک اور سنسکرتک وراثت کے سنرکشن کا ایک متوپورن مادھیم مانا جاتا ہے۔ تاجکستان میں سنگرہالیوں کے وکاس کی شروعات 19ویں شتابدی کے آنت اور 20ویں شتابدی کی شروعات میں مانی جاتی ہے جب بڑے شہروں میں اتہاسک اور پراتاتوک وستوؤں کے سنگرہ کی پرکریا شروع ہوئی۔ سمے کے ساتھ یہ پرکریا وکاسیت ہوتی گئی اور سوویت کال میں تاجکستان میں کئی راجیا سنگرہالیہ استھاپت کیے گئے جنہوں نے پراتاتوک کھوجوں اتہاسک دستاویزوں اور راشٹری سنسکرتی کے نمونوں کے سنرکشن میں متوپورم بھومکا نبھائی۔ سنگرہالیوں کے وکاس کے ساتھ ساتھ تاجکستان میں ایک دلچسپ سنسکرتک کاریہکرم بھی شروع کیا گیا ہے جسے رات میں سنگرہالیہ یا شب در اوسور خونہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وشیش سنسکرتک کاریہکرم ہے جس میں ناگرک وشیش کر یوا رات کے سمے سنگرہالیہ کا دورہ کر سکتے ہیں اور اتہاسک وستوؤں کو نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کاریہکرم عام طور پر ہر ورش 18 مئی کو منائی جانے والے انتراشٹری سنگرہالیہ دیواس کے اوسار پر آیوجت کیا جاتا ہے۔ اس کا مکھیہ ادیشیا سماج کو سنگرہالیوں کی گتیویدھیوں سے جوڑنا اور لوگوں کی اتہاس ایوان سنسکرتی کے پرتی روچی بڑھانا ہے۔ اس رات میں سنگرہالیہ وشیش کاریہکرم سنسکرتک پردرشن سنگیت کاریہکرم گائیڈڈ ٹور اور وشیشکیوں کے ساتھ سنواد جیسی گتیویدھیاں آیوجت کرتا ہے۔ شب در اوسور خونہ کا مکھیہ ادیشیا سنگرہالیوں کو ایک جیوانت اور آکرشک ستھان بنانا ہے نہ کہ کیول پرانی जापानी वस्तुओं का शांत बहंदा। ये कार्यक्रम लोगों को इतिहास को अधिक रोचक तरीके से सीखने का अवसर देता है और उन्हें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के करीब लाता है। विशेष रूप से युवाओं में ये कार्यक्रम इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाता है। शहीदा शराफ तजकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के कर्मचारी शबेदर ओसोर खोना कार्यक्रम के आयोजन के बारे में और इसकी तैयारी के बारे में इस प्रकार कहती है।
1: नमस्कार। तजकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय प्राचीन ताजिक राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति का प्रदर्शन है। राष्ट्रीय संग्रहालय में 3 मंजिले और 1 ताखाना है। राष्ट्रीय संग्रहालय के ताखाने में प्राकृतिक विभाग स्थित है। पहले मंजिल में प्राचीन ईवान मध्यकालीन इतिहास विभाग है। दूसरे मंजिल में आधुनिक ईवान समकालीन इतिहास विभाग और तीसरी मंजिल में ललित ईवान अनुप्रयुक्त कला विभाग यानी चित्रकला विभाग स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रतिदिन घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटक आते रहते हैं। याद दिलाना चाहिए कि घरेलू और विदेशी दोनों आगंतुकों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय के कर्मचारियों की तरफ से 8 भाषाओं में भ्रमण का आयोजन करता जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय में विदेशी मेहमानों के लिए रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, चीनी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में भ्रमण का आयोजन करता जाता है और मैं राष्ट्रीय संग्रहालय में हिंदी और उर्दू भाषाओं की गाइड हूँ और मुझे विदेशियों के सामने ताजिक राष्ट्र के सांस्कृतिक और इतिहास को हिंदी में प्रस्तुत करने पर बहुत गर्व है और खुश भी हूँ। राष्ट्रीय संग्रहालय में नियमित रूप से सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हो जाता है और विशेष रूप से वार्षिक नाइट एट द म्यूजियम का कार्यक्रम राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में 30 प्रोग्राम है। उस रात जो ये सब प्रोग्राम राष्ट्रीय संग्रहालय के कर्मचारियों की तरफ से बना हुआ है। ये कार्यक्रम 18 मई 6 बजे से शुरू होगा, रात के 12 बजे तक काम करेगा। प्रिया श्रोताओं, मैं आप सभी लोगों को नाइट एट द म्यूजियम के कार्यक्रम में राष्ट्रीय संग्रहालय में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आने से हम बहुत खुश होंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय में तशरीफ लाइए।
0: तजकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद संग्रहालयों के विकास में एक नया चरण शुरू हुआ। इस अवधि में देश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति मामहिम इमोमाली रहमों की पहल पर संग्रहालयों को पुनर्जीवित और आधुनिक रूप दिया गया। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नए संग्रहालय स्थापित किए गए और पुराने संग्रहालयों का पुनर्निर्माण किया गया है। देश के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थानों में तजकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रमुख है, जो राजधानी दुशांबे में स्थित है। ये संग्रहालय तजकिस्तान का सबसे बड़ा और आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। इसे सन 2013 में खोला गया और इसमें हजारों ऐतिहासिक वस्तुएं संरक्षित है, जो ताजिक लोगों के हजारों वर्षों के इतिहास को दर्शाती है। यहाँ पुरातात्विक खोजें, कलाकृतियां, प्राकृतिक नमूने और संस्कृति धरोहरें सुरक्षित रखी गई है। तजकिस्तान के संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं के संरक्षण स्थल नहीं है, बल्कि वे वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। वे युवाओं में देशभक्ति, आत्म जागरूकता और इतिहास के प्रति सम्मान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। संग्रहालयों में प्रदर्शनियां, सम्मेलन, बैठकें और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो समाज में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। तजकिस्तान गणराज्य में भी संग्रहालयों का विशेष महत्व है। तजकिस्तान एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर वाला देश है। राष्ट्रीय संग्रहालय कई मंजिलों और बड़े प्रदर्शनी हाले से बना है। इसमें हजारों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वस्तुएं संरक्षित है, जो ताजिक लोगों के हजारों वर्षों के इतिहास को दर्शाती है। संग्रहालय एक महत्वपूर्ण भाग प्राचीन इतिहास विभाग है। यहाँ सराजन, पेंजिकेन, हुलबुक और अन्य ऐतिहासिक स्थलों से पुरातात्विक तत्वित वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। ये वस्तुएं प्राचीन सभ्यता और ताजिक लोगों की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन, प्राचीन सिक्के, हथियार और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं ये दर्शाती है कि ताजिक लोग प्राचीन काल से ही एक उन्नत सभ्यता के वाहक रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय में राष्ट्रीय कला और संस्कृति के उत्कृष्ट नमूने भी संरक्षित है। राष्ट्रीय पोशाकें, संगीत वाद्यंत्र, लोक कला और चित्रकला ताजिक संस्कृति के पहचान को दर्शाते हैं। आगंतुक यहाँ आकर परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली से परिचित हो सकते हैं। संग्रहालय का एक सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन अजिनतेपा मठ से प्राप्त विशाल बुद्ध प्रतिमा है, जो निर्वाण मुद्रा में है। ये मध्य एशिया में बौद्ध कला के सबसे बड़े अवशेषों में से एक माना जाता है और इसका अध्ययन ऐतिहासिक महत्व है। यह दर्शाता है कि तजिकिस्तान प्राचीन समय में विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र रहा है। आज राष्ट्रीय संग्रहालय केवल ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण का स्थान नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कार्यक्रमों का केंद्र भी है। यहाँ प्रदर्शनियां, सम्मेलन, वैज्ञानिक बैठकें और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये गतिविधियां लोगों की सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को इतिहास के अध्ययन के लिए प्रेरित करने में मदद करती है। राष्ट्रीय संग्रहालय पर्यटन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर वर्ष हजारों विदेशी पर्यटक यहाँ आकर तजिकिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक से परिचित होती है। ये संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और तजिकिस्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में योगदान देता है। आज के वैश्वीकरण के युग में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। संग्रहालय राष्ट्रीय और ऐतिहासिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण

आता है। संग्रहालय अतीत और वर्तमान को जोड़ने का कार्य करते हैं और समाज में शिक्षा, देशभक्ति और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए संग्रहालयों का संरक्षण और विकास किसी भी राष्ट्र के सांस्कृतिक भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी तजकिस्तान की राष्ट्रीय संग्रहालय और शब्बेदार ओसोरखोना के कार्यक्रम के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।